गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विनीत, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आप ही के शो में जिसका नाम है संगीत माला, लाइव ऑन एयर ओनली ऑन CFCR 90.5 FM स्ट्रेट फ्रॉम द सास्केटून डाउनटाउन स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, मैं जानता हूं कि काफ़ी अरसा हो गया मुझे लाइव आए हुए। क्या कहें दोस्तों, थोड़ी सी मशरूफियत थी, मगर आज का जो मेरा प्रोग्राम था वो फिक्स था। और स्पेशली आज के शो के लिए मैं बहुत ही प्यारे बॉलीवुड के रोमांटिक से गानों का गुलदस्ता जो है आप लोगों के लिए पेश करूंगा, और होप करूंगा कि आप लोग मेरे शो को, मेरी आवाज़ को और मेरे अंदाज़ को सभी को पसंद करें। काफ़ी मिस किया मैंने दोस्तों आपको, और आई एम श्योर आई एम गोना एंटरटेन यू फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर्स फ्रॉम द सास्केटून स्टूडियो लाइव ऑन एयर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा थीम है वो एक बॉलीवुड के रोमांटिक सॉन्ग्स पर है। तो बेशक आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, जो कि है 306-242-5002, और अपनी पसंदीदा गाने आप हमें फरमाइश कर सकते हैं, आप कोई गाना डेडिकेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने चाहने वालों को। किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो उनको आप ये गाना एज अ डेडिकेशन विश कर सकते हैं। एब्सोल्युटली विल बी मोर देन हैप्पी टू प्ले सम सॉन्ग्स फॉर योर लव्ड वंस। नंबर मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो कि है 306-242-5002। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये इसके प्रायोजक हैं ICCA, विच स्टैंड्स फॉर इंडो कैनेडा कल्चरल एसोसिएशन। इट्स मोर देन 50 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, रनिंग बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड लोकल इंडियंस ओवर हियर। और दोस्तों, हर साल और हर महीने आए दिन कोई ना कोई इवेंट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये संगठन ऑर्गेनाइज करती रहती है। और आप भी बेशक इसका पार्ट बन सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाके, जो कि है www.iccasaskatoon.ca, और इसकी एनुअल मेंबरशिप का लुत्फ़ उठा सकते हैं दोस्तों। और आने वाले दिनों में इनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रिलेटेड हैं, जैसे कि सास्केटून फोक फेस्ट, फिर दिवाली नाइट, न्यू ईयर ईव्स, और होली पर भी इन्होंने पिछले दिनों कोई प्रोग्राम आयोजित किया था, और तरह तरह के डांस सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स दोस्तों। तो बेशक आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के शो में, और सबसे पहला गाना जो मैं है प्ले करना चाहूँगा दोस्तों, आज से ठीक 15 साल पहले सैफ अली खान और डायना पेंटी और दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी जो कि काफ़ी अच्छी चली थी। मूवी का नाम था कॉकटेल, और उसी का पार्ट टू आ रहा है, जिसमें हमारे शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका ने काम किया है कॉकटेल टू में। उसी का एक प्यारा सा अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गाना मैं आपके लिए बजाना चाहूँगा फ्रॉम द मूवी कॉकटेल।

ये था गाना तुझको फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। दोस्तों, रश्मिका मंडाना, शाहिद कपूर और कृति सनोन की ये मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर है और आई होप इट वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ दिस ईयर। इट वॉज क्वाइट अ वेल संग सॉन्ग बाय अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान। अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स थे और आई थिंक प्रीतम दा की म्यूज़िक कंपोजिशन था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे शो में। आज के मौसम के बारे में अगर हम पहले बात करें दोस्तों, तो मौसम पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी गर्माहट का हो रहा है। यहाँ पे 35 डिग्री के आसपास रहा परसों, तो सैस्केटून में जो था मौसम काफ़ी असामान्य सा मौसम था दोस्तों। मगर कहते हैं कि कभी कभी सर्दी में गर्मी का जो एहसास होता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है दोस्तों। तो बस वही चीज़ थी ये, और आई होप कि आने वाले कुछ दिन बेहद बेहतरीन मौसम के निकलें और हमारे सस्कैचुअन वासियों का जो ठंड से प्रेम है वो और बढ़ता जाए इस गर्मी की वजह से, और अक्टूबर में हम उस ठंड का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के शो में और अगले गाने की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये जो गाना है रामचरण और जानवी कपूर के ऊपर है और एआर रहमान का म्यूज़िक है। एक नई मूवी आई है जो कि साउथ की है मगर हिंदी में डब्ड है और अभी रिलीज़ नहीं हुई है, पर काफ़ी एंटिसिपेटेड है। मूवी का नाम है पेडी और गाने का नाम है हला लालो। जी हाँ दोस्तों, तो आपको याद होगा कि रामचरण के फादर और जानवी कपूर की मदर यानी कि श्रीदेवी, इन्होंने चिरंजीवी, जो रामचरण के फादर हैं, चिरंजीवी जी और श्रीदेवी जी ने काफ़ी सारी मूवी साथ में करी है। और आप देखें, किस्मत ऐसे पलटती है कि समय का पहिया ऐसा है कि उन्हीं के बेटा बेटी ने आज एक नई मूवी साइन करी और इस मूवी के मेन रोल, मेन किरदार वो निभा रहे हैं। और लेट्स सी हाउ इज़ दिस सॉन्ग पेडी हले लालो।

हल्लो हल्लो हल्लो दोस्तों, क्या गाना है आजकल की मूवीज़ में जो लिरिक्स होते हैं उनका क्या ही कहना। मगर काफ़ी तिरकता और भड़कता हुआ गाना है और रामचरण ने काफ़ी अच्छी इसमें कारगर्दगी करी है। काफ़ी अच्छे डांस के मूव्स हैं इनके, तो आई होप दिस मूवी रॉक्स द बॉक्स ऑफिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस श्रृंखला में जो अगला गाना मैं पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो है एक नई मूवी आई है। अगेन इट्स नॉट अ रीमेक आई शुड से, बट ये जो गाना है ये बीवी नंबर वन मूवी में पिक्चराइज हुआ था और उसी गाने को थोड़ा रैम्प अप करके इन्होंने फिर से बनाया है। मूवी है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें वरुण धवन, मृणाल और पूजा हेगड़े ने काम किया है। मुझे लगता है ये एक रोम कॉम है, काफ़ी कॉमेडी सी रोमांटिक सी मूवी होगी दोस्तों। तो लेट्स हियर द सॉन्ग चुनारी चुनारी फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है।

0: लाल बाग से लाल चुनरिया लाई, चुनरी चुनरी चुनरी चुनरी। 1998 में बीवी नंबर वन मूवी आई थी दोस्तों, सलमान खान, करिश्मा कपूर और अनिल कपूर और सुष्मिता सेन जी ने उसमें काम किया था। एक रोम कॉम मूवी थी, उस साल की ब्लॉकबस्टर हिट थी। मुझे याद है मैं काफ़ी छोटा होता था उस वक्त और काफ़ी बढ़िया सी मूवी थी। मेरे पेरेंट्स के साथ मैं थिएटर में देखने गया था इस मूवी को और काफ़ी बढ़िया गाने थे, अनु मलिक द्वारा म्यूज़िक था। उसी गाने को इन्होंने रीमेक किया और है जवानी तो इश्क होना है ये मूवी में ये गाने का यूज़ किया है इन्होंने। एंड आई होप दिस विल बी अ ग्रेट ग्रेट मूवी ऑफ दिस ईयर। जी हाँ दोस्तों, आप फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 3062425002 और हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कोई दरख्वास्त भेज सकते हैं या कोई गाना भेज सकते हैं जो आपके मन में हो और आप हमसे प्ले करवाना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले गाने की ओर। मैंने अभी पिछले 3-4 गाने जो प्ले किए हैं वो लेटेस्ट मूवीज़ के प्ले किए हैं और थोड़े बहुत और भी मेरे पास ऐसे गाने हैं। तो दोस्तों ये जो गाना है ये अक्षय कुमार की एक नई मूवी आ रही है जिसमें एक न्यू कमर अक्षरा सिंह ने उनके साथ काम किया है। मूवी का नाम है वेलकम टू द जंगल और गाने के जो बोल हैं वो आप खुद ही सुन लें और मुझे बताएं कैसे हैं। जी हाँ, गाने के जो बोल हैं वो है,
1: टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो, आइटम बॉय बनकर भोजपुरी में घिस रहा है।

0: ले भाई।
1: अरे जी हाँ दोस्तों, ये जो गाना था ये था मूवी भू वेलकम टू द जंगल से, और मुझे भी पता नहीं था कि ये पूरा गाना ही इन्होंने भोजपुरी लैंग्वेज में बनाया है। काफ़ी कॉमेडी सा पिक्चराइजेशन है इसका, और अक्षय कुमार साहब ने तरह तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं इसमें। तो आई होप ये एकदम ठहाको भरी मूवी होगी एंड इट शुड डू ग्रेट विथ अक्षरा सिंह। आई थिंक शी इज़ द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ भोजपुरी सिनेमा, तो उन्हीं के साथ अक्षय कुमार ने इस गाने में परफॉर्म किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले गाने की ओर। अगला गाना जो है वो भी मूवी जो है अक्षय कुमार की है दोस्तों, और इट्स अ लेटेस्ट रिलीज़ फ्रॉम द मूवी भूत बंगला। अक्षय कुमार ने इसमें काम किया है प्रीतम दा का म्यूज़िक अरमान मलिक की आवाज़ में। जो गाना है वो है राम जी आके भला करेंगे, राम जी आके भला करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, गाने के जो बोल लिखे हुए हैं शायद अमिताभ भट्टाचार्य जी ने, वाकई में राम जी आके ही भला करेंगे हम सबका, ना ही सिर्फ कनाडा में मगर हिंदुस्तान में और सारे दुनिया में राम जी ही आके हम सबका भला करेंगे। एब्सोल्युटली दोस्तों, तो ये गाना था मूवी भूत बंगला से। अगले गाने की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक नई मूवी आई है जिसमें आयुष्मान खुराना, वामिका और सारा और रकुल प्रीत, इन सब ने, काफ़ी मल्टी स्टारर मूवी है और मूवी का नाम है दोस्तों पत्नी पति पत्नी और वो। और इसमें एक पति है, एक पत्नी है और एक वो नहीं, दो वो हैं। तो ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला वाला बात नहीं है, ये है पूरी जो चौकड़ी है उसके बारे में कहानी है। और काफ़ी आयुष्मान खुराना की मूवीज़ की जो थीम होती है वो भी काफ़ी अलग होती है, काफ़ी मज़ेदार होती है और अच्छी चलती है उनकी मूवीज़। तो आई एम श्योर दिस वुड बी अ ग्रेट कॉमेडी और रोमांटिक सी मूवी टू डू वॉच फॉर। सो लेट्स हियर द सॉन्ग रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो दो।

का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। दोस्तों पति पत्नी और वो दो, जी हाँ वो दो, मेरे से गलती हो गई, पति पत्नी और वो जो संजीव कुमार की आई थी वो नहीं।

0: FCR.ca, because life doesn't always work around your schedule, but now it doesn't have to.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप ही के शो में जिसका नाम है संगीत माला लाइव ऑन एयर ओनली ऑन 90.5 CFCR FM, स्पॉन्सर्ड बाय ICCA विच इज इंडिया कैनेडा कल्चरल एसोसिएशन. दोस्तों ये एक 50 साल से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे चलती आ रही और आए दिन नए नए प्रोग्राम्स, इवेंट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ ये अरेंज करते हैं. और आपको इसका मेंबरशिप लेना हो तो इनकी वेबसाइट पे जाइए, जो कि है www.iccasaskatoon.ca, और वहाँ पे इनके एनुअल मेंबरशिप का लुत्फ उठाइए. तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, आज के जो प्रोग्राम है हम उसमें काफ़ी रोमांटिक गाने और नए गाने, पुराने गाने, जो भी आपकी फरमाइश हो, दरख्वास्त तो हम प्ले कर रहे हैं. और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक नए कॉलर हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, मैं अभी उनसे बात करता हूँ. नमस्ते. नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते.
1: क्या मैं जान सकता हूँ कौन है लाइन पे?
2: मैं पवन कुमार जैन.
1: नमस्ते पवन जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया.
1: और मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं भारत के ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से आया हुआ हूँ.
1: ओ रियली? बहुत बहुत मुझे ये सुन के ताज्जुब हो रहा है कि ग्वालियर से भी हमें लोग सुन रहे हैं और ऑनलाइन हैं और फ़ोन करके हमसे बात करना चाह रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी. तो बताइए, आज का आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या किया?
2: आज का दिन बहुत अच्छा है, मौसम भी सुहाना है.
1: जी जी जी, तो आप ग्वालियर में हैं अभी या कहीं और हैं?
2: नहीं, मैं यहाँ कनाडा में आया हूँ.
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अभी सैस्केटून में ही हैं. बहुत बढ़िया, आपका हार्दिक स्वागत है. यहाँ पे आपका कोई मेन रीज़न आने का है या कुछ?
2: यहाँ बेटी दामाद के यहाँ आए हैं.
1: अच्छा जी.
2: और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा महसूस हो रहा है.
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो बताइए मैं कौन सा गाना आप लोगों के लिए प्ले कर सकता हूँ पवन जी?
2: ये गा सकते हैं आप, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था. क्या ये?
1: एब्सोल्युटली पवन जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप जो गाना बोलेंगे हम वो प्ले करेंगे. क्या आप ये गाना किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
2: हाँ, क्योंकि ये स्टूडियो मुझे मालूम चला 100 साल पुराना है.
1: जी जी जी.
2: और अंग्रेजों के टाइम का है.
1: जी.
2: 100 साल पुराना ये गाना.
1: जी जी जी.
2: भारतवासियों को, विशेषकर हमारी धर्मपत्नी जो शकुन जैन यहाँ पर हैं.
1: जी जी जी जी.
2: उनके लिए गाना चाहते
1: हैं. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. थैंक यू पवन जी, आपने कॉल किया और ये गाने की दरख्वास्त करी. मैं बेशक आपके इस गाने को प्ले करूंगा और ये गाना डेडिकेटेड है हमारे सारे हिंदुस्तान के भारतवासियों के लिए, प्लस जो पवन कुमार जी की धर्मपत्नी है शकुंतला जैन जी, उनके लिए. तो लेट्स हियर द सॉन्ग 100 साल पहले फ्रॉम द मूवी जब प्यार किसी से होता है, पिक्चराइज्ड ऑन देव आनंद एंड आशा पारेख.

0: तो ये गाना था 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, फ्रॉम द मूवी जब प्यार किसी से होता है। और हमारे एक नए लिसनर श्री पवन कुमार जी जैन, जो कि ग्वालियर से हैं, फिलहाल सैस्केटून में हैं, इन्होंने कॉल करके ये गाना रिक्वेस्ट किया था। थैंक यू पवन जी, और हम होप करते हैं कि आप हर हफ्ते ठीक सुबह 11 बजे हमें इस तरह सुनते रहें और कॉल करके अपनी दरख्वास्त भेजते रहें। दोस्तों, अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। ये भी हमें एक रिक्वेस्ट आई है और कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मैं जान सकता हूँ, हेलो, आप लाइव ऑन एयर हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
1: हाँ, सुन रहे
0: हैं। नमस्ते, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ?
1: शकुन जैन से।
0: नमस्ते शकुन जी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया।
0: और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: साहकातून से।
0: अच्छा जी, तो कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी हौसला अफजाई होती है जब आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। तो आपकी कोई दरख्वास्त या कोई रिक्वेस्ट हो जो कोई गाने की जो हम आपके लिए प्ले कर सकें शकुन जी?
1: एक पुराना गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आजा सनम मधुर चांदनी में भी।
0: क्या बात है, क्या बात है। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो आ जाएगी
1: वीराने
0: में भी बहार। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही चुनिंदा गानों की जो है फरमाइश करी है आपने। और क्या किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं आप ये गाना?
1: हाँ, अपने हस्बैंड पवन जी को करना चाहती हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो पवन जी वही शख्सियत हैं जिन्होंने अभी पहले फोन करके हमें रिक्वेस्ट करी थी?
1: हाँ।
0: क्या बात है, क्या बात है शकुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना हम बेशक आपके लिए और पवन जी के लिए प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच, और इसी तरह आप हमारे शो को हर हफ्ते ठीक सुबह 11 बजे सुनते रहें। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। हाँ दोस्तों, लेट्स हियर द सॉन्ग आजा सनम मधुर चांदनी में हम, फ्रॉम द मूवी चोरी चोरी। 1956 में ये मूवी आई थी और राज कपूर और नरगिस जी ने इसमें काम किया था। दोस्तों, मुझे लग रहा है ये गाना भी पहली बार ही हमारे स्टूडियो में बज रहा है। तो थैंक यू शकुन जी, लेट्स हियर द सॉन्ग फॉर शकुन एंड पवन।

आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो आ जाएगी वीराने में भी बहार। 1956 की मूवी चोरी चोरी से ये गाना पिक्चराइज हुआ था राज कपूर और नरगिस जी पर, और ये स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी हमारे अनदर न्यू लिसनर शकुन जैन जी से। थैंक यू शकुन जी, ये गाना मुझे लगता है हमने भी हमारे स्टूडियो में पहली बार ही प्ले किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग एंड लेटिंग अस प्ले दिस सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, जो हमें रिक्वेस्ट तो आती जा रही हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, और थम ही नहीं रही हैं, और हमेशा की तरह इस बार भी जो हमारी रेगुलर लिसनर हैं जिनका नाम है किरण जी, उनको कोई कैसे भूल सकता है। शायद हम ये शो करना भूल जाएं या कोई गाना चलाना भूल जाएं, पर उनका फ़ोन नहीं आया ये हो नहीं सकता, और ये शो जो है कंप्लीट सा महसूस नहीं करता अगर उनका कॉल नहीं आता है। तो उन्होंने भी एक गाने की रिक्वेस्ट करी है जो कि है काफ़ी पुराना गाना और रोमांटिक सा गाना है, मौसम है आशिकाना, जो पाकिजा मूवी आई थी 1972 में, उस मूवी का ये गाना है और काफ़ी रोमांटिक सा है। मीना कुमारी जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज़ में। लेट्स हियर द सॉन्ग फॉर किरण जी, मौसम है आशिकाना।

मौसम है आशिकाना मूवी पाकिज़ा से मीना कुमारी के ऊपर ये गाना पिक्चराइज़ किया हुआ लता मंगेशकर की आवाज़ में, काफ़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाला गाना दोस्तों। लोग आज भी बड़े दिलोजान से इस गाने को सुनते हैं और फरमाइशें करते रहते हैं। थैंक यू किरण जी हमें कॉल करने के लिए और ये गाना प्ले करवाने के लिए। दोस्तों हमको अभी अभी और एक कॉल आई हमारे रेगुलर लिसनर से जिनका नाम है वजाहत बाजवा। उन्होंने एक गाने की फरमाइश करी है और हमसे कहा है कि उनको वो पिछले एक महीने से थोड़े से मशरूफ़ थे उनके पर्सनल कामों में और इसलिए वो हमारा जो शो है सुन नहीं पाए, मगर आज उन्होंने सुना और कॉल करके हमें कहा कि ये गाना बेशक हम उनके लिए प्ले करें। तो दोस्तों गाना है मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी है कहाँ फ्रॉम द मूवी बाग बा पिक्चराइज्ड ऑन अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। लेट्स हियर इट।

0: ज़िंदगी है कहाँ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी संगीन गाना है और अच्छी मूवी थी बागमा, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के ऊपर ये सारा गाना और सारी मूवी पिक्चराइज थी। और ये दो माँ बाप के बारे में थी जो अपने बच्चों की खुशी के लिए जो वो सारी उम्र ताउम्र सारी ज़िंदगी जो सेक्रीफाइस करते हैं, और जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में मशरूफ हो जाते हैं और इनको समय नहीं दे पाते हैं और अपने हिसाब से अपने माँ बाप को ट्रीट करते हैं, उस बारे में ये गाना है। और काफ़ी संगीनियत है इस मूवी में। मैं चाहूँगा कि कभी आप लोगों को समय मिले तो ये गाना ज़रूर देखें, और स्पेशली विदेश में रह कर के इस गाने का मतलब और इस मूवी का जो सारांश है वो आपको और जो है दिल को छुएगा। तो बेशक थैंक यू बाजवा जी ये गाना रिक्वेस्ट करने के लिए। मेरी भी आंखें नम हो गई ये गाने सुन करके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद हम आपसे फिर से मिलते हैं।
1: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
2: I feel like pizza.
3: I feel like beer.
4: This does not have to be a paradox.
5: Who are you?
4: I am Nicolas Flamel, the philosopher and alchemist. I tried to turn base metals into gold, eh? And you should head to Paradox Pizzeria and Brewery. They have Detroit-style cheesy crust pizza and one-of-a-kind ales.
6: Paradox Pizzeria and Brewery has all the in-house food, local brewed craft beer, and homey vibes you're looking for. And our slice was runner-up for the best gourmet pizza in Planet S. Paradox Pizzeria and Brewery at 806 Broadway Avenue. We're alchemically good.
4: The gold, eh?
7: ProPrint is your local printer, and we love being a part of the community. We feel that in order for Saskatoon to be strong and vibrant, we need to support one another. We are the go-to print shop for community organizations and can help make your project come to life. So keep us in mind the next time you're in need of printing, a custom rubber stamp, or even a banner for a trade show. Visit us at 127A Avenue D North or online at proprint.ca. ProPrint, your local printing pros.
8: CFCR, we acknowledge that we are broadcasting from the traditional territory of the Cree, Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota nations, and homeland of the Métis. We recognize and respect their enduring connection to this land, which has been a site of gathering, culture, and tradition for thousands of years. We are committed to amplifying Indigenous voices and stories and to fostering relationships rooted in respect and understanding as we work towards reconciliation. We are grateful for the opportunity to serve our community on this land.
0: वेलकम बैक दोस्तों, आप ही के शो में जिसका नाम है संगीत माला, लाइव ऑन एयर ओनली ऑन 90.5 CFCR FM स्ट्रेट फ्रॉम द सैस्केटून स्टूडियो। हम आपके लिए तरह तरह के गानों के गुलदस्ते लेके आते हैं दोस्तों हर हफ्ते ठीक सुबह 11 बजे सैस्केटून लोकल टाइम से। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो पे जो कि है नंबर 3062425002, और आपकी डेडिकेशंस रिक्वेस्ट बेशक हमें भेज सकते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा आपके गाने प्ले करने के लिए। आवर शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय ICCA विच स्टैंड्स फॉर इंडिया कैनेडा कल्चरल एसोसिएशन, और उन्हीं की हेल्प से हम ये शो आपके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हमने आपके लिए प्ले करे हैं, और हमारा अगले आधे घंटे के लिए और आपके साथ ये समय बुक्ड है। आप बेशक सुने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएँ और हमें कॉल करें, बताएं कैसा आपको प्रोग्राम हमारा लग रहा है। दोस्तों अगला गाना जो है ये मेरे दिल के भी काफ़ी करीब ये गाना है, और हाल फिलहाल में एक नई मूवी आई थी धुरंधर 2, जी हाँ जो सेकंड पार्ट आया उस मूवी का ये गाना है। अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना है, रणवीर सिंह के ऊपर पिक्चराइज्ड, जो तू ना था। काफ़ी सीरियस और संगीन गाना है, काफ़ी डेप्थ है इस गाने में, इरशाद कामिल के लफ्ज़ हैं इसमें, और अरिजीत सिंह की मेलोडियस सी आवाज़, शाश्वत सचदेवा का म्यूज़िक, और लेट्स हियर द सॉन्ग जो तू ना था फ्रॉम द मूवी धुरंधर.

जी हाँ दोस्तों, ये गाना था फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज पार्ट टू। शाश्वत सचदेव का म्यूज़िक, अरिजीत सिंह की आवाज़ और इरशाद कामिल के लव्स, काफ़ी डेप्थ और मेलोडियसली गाया गया ये गाना अरिजीत सिंह द्वारा। और अरिजीत सिंह ने भी इस गाना गाने के बाद रिटायरमेंट ले लिया है। मुझे लगता है कि ये टेम्प्ररी हो, क्योंकि अभी उनको ज़्यादा इतना नहीं वक्त हुआ है या इतना समय नहीं हुआ है कि उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और उनकी आवाज़ की जो कायल हैं वो लोगों की तो बात ही कुछ अलग है। तो मुझे लगता है कि वापस अरिजीत सिंह को वापस आ जाना चाहिए। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट चाहिए हमारे रेगुलर लिसनर से, श्री हर्षमीत जी, जो कि अभी सैस्कटून ट्रांजिट में हैं और हमारा गाना सुन रहे हैं। एवरग्रीन से प्रेस्टन एवेन्यू जा रहे हैं और हमारा लाइव शो सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच हर्षमीत जी, और आपकी रिक्वेस्ट आई है अगेन फ्रॉम द मूवी जब प्यार किसी से होता है। पर दोस्तों ये पुरानी वाली नहीं, नई वाली है, जो कि 1998 में आई थी। सलमान खान और ट्विंकल खन्ना ने इसमें काम किया था। कुमार शानू की आवाज़ में ये गाना है और नम्रता शिरोडकर इस गाने में पिक्चराइज हैं। स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियों में ये गाना शूट किया गया था दोस्तों, और काफ़ी रोमांटिक सा गाना है। तो लेट्स हियर इट फॉर हर्षमीत।

ओ जाना ना जाना फ्रॉम द मूवी जब प्यार किसी से होता है, रिक्वेस्टेड बाय आवर रेगुलर लिसनर हर्षमीत जी. थैंक यू हर्षमीत जी हमारी इस शो को सुनने के लिए और गाना रिक्वेस्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच. आई विश यू अ ग्रेट वीकेंड अहेड. आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले गाने की ओर. ये गाना भी अभी की इसी साल की एक मूवी आई थी, दे दे प्यार दे पार्ट टू, जिसमें कि अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह ने काम किया था. गाने के बोल हैं आखिरी सलाम, और इसे गाया है अरमान मलिक ने और सागर ने, और लव रंजन की ये म्यूज़िक थी, अंशुल शर्मा की डायरेक्शन. लेट्स हियर द सॉन्ग आखिरी सलाम फ्रॉम द मूवी दे दे प्यार दे टू.

आखिरी सलाम फ्रॉम द मूवी दे दे प्यार दे टू, अजय देवगन रकुलप्रीत सिंह की ये मूवी। इट वॉज एन एवरेज मूवी बेस्ड इन लंडन। अ नाइस सॉन्ग संग बाय अरमान मलिक, थैंक यू। नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो गाना है वो है एक रिक्वेस्ट अगेन। जी हाँ, आज बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट आ रही है हमें, और ये गाने की रिक्वेस्ट आई है सीधे कैलगरी अल्बर्टा से। हमारे एक रेगुलर लिसनर आशीष जी ने ये गाने की रिक्वेस्ट करी, और गाना जो है वो है फिल्म कोई मिल गया से, जिसकी सारी शूटिंग एमरल्ड लेक और बैनफ और जैस्पर के आसपास हुई थी, और ये गाने का भी पूरा शूटिंग वहीं हुआ है दोस्तों, पेटो लेक और एमरल्ड लेक के एरियाज़ में। तो लेट्स हियर द सॉन्ग संग बाय उदित नारायण एंड चित्रा जी, पिक्चराइज्ड ऑन ऋतिक रोशन एंड प्रीति जिंटा, कोई मिल गया।

काफ़ी अच्छी मूवी आई थी दोस्तों ये, ऋतिक रोशन ने इसमें एक स्पेशली एबल्ड पर्सनालिटी का रोल किया था, और फिर सडनली उनमें चेंजेस आते हैं और वो इस मूवी के हीरो बन जाते हैं। और इसके बाद इसकी पार्ट टू भी आई थी, वो भी बहुत बढ़िया चली, गाना भी काफ़ी सुंदर है, और आशीष जी ने ये गाना हमें रिक्वेस्ट करके भेजा, थैंक यू वेरी मच। बयान्फ की बर्फीली वादियों में ये गाना पिक्चराइज हुआ था, इट वाज अ नाइस रीज़न टू प्ले दिस सॉन्ग स्पेशली इस गर्म मौसम में। अगले गाने की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला गाना जो है हमें फिर से रिक्वेस्ट चाहिए अर्जुन जी से, और गाने के जो बोल हैं वो काफ़ी ही बढ़िया, तो क्या बोलूँ मैं, पर अलग है। साउथ की मूवी है पुष्पा 2, रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन जी ने इसमें काम किया है, और टाइटल ट्रैक है दोस्तों, लिसन टू इट एंड हैव फन।

जी हाँ दोस्तों, ये गाना था पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंडाना के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया। और दोस्तों कर्नाटका के जो सैंडलवुड के जो स्मगलर्स थे उनके ऊपर ये मूवी थी। एक ब्लॉकबास्टर मूवी थी और मैं कहूँगा कि इस मूवी ने साउथ की इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और बॉलीवुड को भी एक टक्कर देती हैं ये मूवीज़, और इनका एक अलग ही ऑरा रहता है। तो अल्लू अर्जुन को तो खैर हम सब जानते ही हैं, ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। रश्मिका मंदाना ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था इसमें। तो दोस्तों अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। ये एक गाना है दोस्तों 2001 में, जब एल्बम का दौर होता था, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक कुछ नहीं होता था, गूगल था, ऑर्कुट था, पर लोग टीवी ज़्यादा देखते थे, इंटरनेट इतना यूज़ नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं होते थे, पेजरों का ज़माना था। उस वक्त का ये एल्बम का सॉन्ग है। संगीता जी ने ये गाना रिक्वेस्ट किया है और गाने के बोल जो हैं वो है 4 दिन की ये जिंदगानी, और जो बैंड है उसका नाम है 7। अच्छा गाना है दोस्तों, लेट्स हियर द सॉन्ग, रिक्वेस्टेड बाय संगीता जी।

थैंक यू संगीता जी फॉर दिस रिक्वेस्ट ऑफ सॉन्ग। मैंने भी, मुझे ये याद आ रहा है, गाना सुना हुआ है और सेवन बैंड से ये गाना है। इट वॉज़ अ नाइस सॉन्ग, ऑफ कोर्स पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो गई। थैंक यू सो मच संगीता जी। दोस्तों, प्रोग्राम के हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं और समय कहाँ गुजरता है मालूम ही नहीं पड़ता। आखिरी के जो हैं 10 मिनट बचे हैं और इसमें मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा, कोई रिक्वेस्ट हो तो आप बेशक कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पे 3062425002 पर। और अगला गाना जो है दोस्तों, ये एक हालांकि इंग्लिश गाना है मगर इंडिया में भी काफ़ी फेमस है। अरिजीत सिंह और एड शीरन ने इसको एक फ्यूजन का रंग दिया है जो कि पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में गाया गया है दोस्तों ये। और करीब करीब 6.5 मिलियन व्यूज़ हुए हैं इस गाने को सिर्फ 10 मंथ में। ऑफ कोर्स एड शीरन और अरिजीत सिंह की जो दीवानगी है उसका कोई मोल ही नहीं है, इट्स लिमिटलेस। सो लेट्स हियर द सॉन्ग सैफायर, संग बाय नन अदर देन सिंगर्स ऑफ द सेंचुरी एड शीरन एंड अरिजीत सिंह।

0: भेजा सरकार।
1: खानोखान की मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओ नो, पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो।

0: बार बार सुनो, हजार बार सुनो, ये सुनने की चीज है हमारे दिलरुबा, सुनते जाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं हमारे शो की बात कर रहा हूँ। मैंने बैक टू बैक शम्मी कपूर के गाने एज अ फ्यूजन लगाए। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। और इसी तरह आप हमारे शो को हर हफ्ते ठीक सुबह 11 बजे सैस्केटून लोकल टाइम 11 बजे के आसपास 11 बजे से सुन सकते हैं। और अगले हफ्ते मैं नीपा जी या मनीष जी आपका स्वागत करेंगे और आपके लिए फिर से नए गानों के गुलदस्ते पेश करेंगे। तो आप सुनते रहिए संगीत माला लाइव ऑन एयर ओनली ऑन 90.5 FM सैस्केटून से। थैंक यू, शब्बा खैर, धन्यवाद।
1: Annual Sled Island Music and Arts Festival is back from June 17th to 21st. Experience over 200 bands, plus comedy, art, and much more in diverse venues across Calgary, Alberta. Featuring experimental hip-hop group Clipping as guest curator, chamber folk ensemble Black Country New Road, desert rockers Etran de l'Air, pop